0: इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स. फॉर एनीथिंग टू बिकम एन आइसक्रीम यू हैव टू व्हिप इट सो दैट उसके अंदर एयर ये हो जाए, अमालगमेट हो जाए.
1: ओके.
0: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको टाइम लगता है.
1: टाइम लगता है
0: हाँ. लेकिन ये जो बाकी चीज होती है इट्स नॉट आइसक्रीम. जैसे जिलाटो, जिलाटो इज नॉट जिलाटो. इसलिए जिलाटो में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं.
1: मैं कभी गई नहीं जिलाटो.
0: अरे जगह नहीं है कोई शहर
1: मतलब
0: नहीं.
1: मैंने कभी खाया नहीं जिलाटो.
0: हाँ तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स.
1: ओके.
0: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है.
1: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम.
0: ओके.
1: मुझे लगा मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं. एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप. कोक होती है ना हमारी.
0: साउंड्स हॉरिबल
1: बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी.
0: टेल मी ये दिल्ली में मिला था.
1: हाँ तो
0: ओके नहीं ठीक है, अच्छी बात है.
1: अरे टेस्टी थी.
0: आई एम श्योर जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है.
1: दूध सोडा हाँ लोग पीते
0: हैं.
1: लोग पीते. वो कोक सोडा पीते
0: व्हिच.
1: ओके ठीक है. अभी
0: दूध कोक.
1: दूध कोक वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी.
0: हाँ शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी.
1: हाँ अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
0: अभी. भिक्की कौशल का एक गाना है.
1: ओके वाओ.
0: बैड न्यूज करेगी एक पिक्चर है.
1: बैड न्यूज. ओके.
0: उसका गाना है जानम.
1: जानम. जानम देख लो.
0: नहीं वो वीर जरा का गाना है. बहुत अच्छा गाना है.
1: नहीं वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
0: नया कुछ
1: नया सुनने की कोशिश कर रहे हैं. ओके
0: ऑलराइट.

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, इट वॉज वेरी स्लो.
1: आई लाइक द सिंगर.
0: हु इज द सिंगर?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: ओके.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट? मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने?
1: सुने. अच्छा. आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्टी पिक्चर आई थी.
0: बल्टी?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या या, दैट वाज बल्टी. व्हाटएवर बल्टी इज.
1: सो एनिमल इज बल्टी.
0: सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाटएवर बल्टी इज, इट एक्चुअली साउंड्स कि इट इज एप्ट फॉर दैट मूवी.
1: या उस पिक्चर में एक गाना, ठीक है, गाने का नाम है पहले भी मैं. रोमांटिक गाना है.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: नाइस सॉन्ग.
0: अच्छा सॉन्ग है वो.
1: अच्छा गाना.
0: वो इन्होंने गाया?
1: या वो इन्होंने गाया.
0: अच्छा. विशाल
1: मिश्रा.
0: मिश्रा.
1: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. And I kept feeling that ये गाना अर्जुन कनुंगो, there is this artist, singer, pop artist, उसने गाया है.
0: अच्छा.
1: And I kept feeling कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, good. मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है. He is actually वो अंग्रेजी गाने बोलते हैं, बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
0: बेस ज्यादा है.
1: हाँ. तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है. बट नहीं, दैट सॉन्ग वाज आल्सो और इज आल्सो संग बाय विशाल मिश्रा. सो विशाल मिश्रा रिमाइंड्स मी ऑफ अर्जुन, एंड विशाल मिश्रा आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ एश किंग. बट जब ही आई लिसन टू विशाल मिश्रा, I like listening to Vishal Mishra.
0: Okay. मतलब उसी के सॉन्ग सुनने का बार बार मन करता है?
1: नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा. It's just that, like I said, वो मॉड्यूलेट बहुत अच्छे से करता है. वो
0: एक एक वर्ड को समझता है.
1: ये बोलो क्या? हाँ,
0: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल.
1: या देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम मूवीज या मूवी के गाने.
0: अरे हाँ, आजकल तो
1: नहीं. देयर इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग, और ये ऐसा नहीं कि अभी सही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई दैट इज, कि कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है. वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ से 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं. गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता.
0: एग्जैक्टली.
1: एंड देन सडनली वो फिर बंद हो जाता. एंड देन सम सिंगर,
0: सिंगर
1: एंड देन सडनली
0: ही टेक्स अ ब्रेक. ना
1: नहीं, एंड देन सडनली अ न्यू सिंगर इज इन ट्रेंड नाउ. जैसे
0: आई डोंट नो,
1: अब जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित

0: धवन वॉज एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में अरिजीत सिंह वॉज एवरीवेयर, ठीक है, अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था, ठीक है, अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद,
0: एंड इट हैज नथिंग टू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री, राइट, माय क्वॉम इज, और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, he's singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor. क्योंकि artist हो ना आप.
0: Right.
1: तो आपको सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब ही आया था, तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, and then towards the peak, मतलब absolute peak, the Imran Hashmi phase. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, वेरी डिफरेंट, बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड, पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट,
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, जो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
0: राइट,
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. Right. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता एक जस्ट एक्सीडेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है, और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माय हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी,
1: हाँ हाँ याद है मुझे,
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स गाना भी था उसमें.
0: हाँ, तो उसमें एक गाना है सुन जरा, ठीक है, वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने, ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस हुआ.
1: अच्छा,
0: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है.
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
1: ओके,
0: I don't necessarily listen to Adnan Sami songs. Very talented singer, again. But that particular song, I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है.
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है,
0: correct,
1: हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
0: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
1: हाँ.
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should stay in the scene. Right. That is what my point is.
1: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
0: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan? Tell me the last.
1: अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ, सही बोल.
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
0: अभी भी अच्छा
1: है.
0: हाँ, अभी भी काफी अच्छा है.
1: हाँ.
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
1: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
0: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 आ गई है.
1: चलो, गुड.
0: अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
1: अच्छा, टाइम

0: गुड टाइम
1: उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझो ना,
0: समझो ना। ओके
1: सुना, तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा।
0: अरे क्या बात कर रहा है, टाइम हो गया।
1: हाँ टाइम हो गया है, तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा। तो मनावाटू धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस, और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए।
0: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मनावाटू, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।
0: ओके बाय।